0: 张张了他不写不写不多啊。
1: 嗯嗯。
0: 是常不写呢。你为我了让您见不着许多。
1: 可是这就给您见不着。
0: 哦。
1: 啊。
0: 哦妈的妈的妈的妈的。你啊你也挺这行为的。常不写提这张菜姐可是果然给那么久要我妈店上让什么下次年龄。你没让菜姐让光大了不去。
1: ती निमो अरे नमजु निम छास ने कोंदा शुये मरांगे सेब दिजो गुमजे सिरा दो अरे चिमलु माची जा छेबजे
0: ओ दिचे रंद माची मिनी गे थेंदा छिलो दादा मेजा युन न छुदु छेबदी गुंदे जब दादा जी सिशुने थंद छिबे मोदो लेरी दे तुगु नंगी मासे योग नर्मा सुबे मिनाल सुंगेब छिया छेतब दुनसे तो
1: मुनिर बे
0: मुनेई
1: छेंदे बियास

0: 叶鸿生，你妈他个长得也不渣。
1: 哎，大爷大，同学同学，
2: 呀呀，
0: 有的有的有的有的，
1: 啥的
2: 啥的，
1: 呀，那，
2: 哎呀，
1: 哎呀，等下的吧，
2: 有事的，
1: 来过来，
0: 咱们先到对面大些，
1: 哎，可是，
0: 对不起啊，
2: 呀，大爷大，
1: 呀，阿妹，就是，
0: 我这，
2: 呀，
3: 对的，你跟这些不是啊？ये वो शनल तक्षे चिका जू सर्वा मी सो लास कुई शासेल देशे मा कुकबा चीशा जेम कीब दुखे
2: कीब दुखे चे
3: कीब दुखे आ
2: तक्षे कि जेचे बा जे दाया
3: मा जू
2: मा जू

देखा रा यांग सा जे शेन था जाओ वाला निमा छर नो था जिंगारे लंग लिंग थू यो शे ये सोचा मांग भी देखा रा ने जा शिंग रंजुन छुनी ला जिसों शुए दे कांगा खंगी अंग छो शे ये